0: छड़ वह करवार सबको पूरा आपे होवे घट न कोई आख पत परवाना पिछे पाई है ता नानक तोलिया जपै
1: वधि सो वधिक नानका सचा वेखे सोए सबनी छल मारिया करता करे सोए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे जिनके

प्रीति रथ जते का जोरग थवा द्वापरत पे का सत के रथवा हो काल जुग रथ अग्न का कूड़ग्रथवा।

वस्त्र ले कपड़े पहरे तुरखाने वल किया चारे बिल सिया पड़े गुणित ने चार विचार।

0: पाए होय प्राण छुटिए पी फिर पाइए हो नानक तक ना टूटई जे तक होवे जोर महला पहला।
1: नाए मनिए पति उपजे सलाही सठ सू।

0: भाषा खाई, अंतर पूजा पढ़े कते बा संजम दुर्गा पाई, छोड़े ले पखंडा नाम ले जाए तरंदा महला पहला।
1: मन

करें आहार। शर्म धर्म का डेरा दूर, नानकूर रया भरपूर, मथा टिक तेड़ धोती क खाई, हथ सुजत कसाई, नील वस्त्र पहरुव प्रवान, मलेश थाल पूजे प्राण, अपाख्या का कुठब

माया मोह परम पैपुले सोत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु।

0: पति
1: सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सैमं गुर प्रसाद बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मन पर तक गुरु निस्तारे वडी वडियाई आचरज शोभा कारज आया रासे नानक कौ गुर पूरा पेट्यो सगले दुख विनासे

होर गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मिटे दात। गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मिटे दात। दंडौत बंदन अनकवार, सर्व कला समरथ, डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हाथ। डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हाथ। परम सत्कारयोग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा विच गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सत संगी जनों सतगुरु महाराज की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार दे नाल कीर्तन रूप विच गुरबाणी का लाहा प्राप्त किया है। लड़ीवार गुरबाणी शब्द विचार अज दे अमृतमई बचना दा पाठ पावन शब्द भाई साहब जी पासों सरवन कीता। पवित्र बाणी दी विचार दे नाल जुड़न वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है मन बिरतियां नू एकागर करदे होए निमाणे जे हो के समरथ सतगुरु जी दे पावन चरणा च जुड़न दा यतन करिए। गुरु पातशाह जी अज दे अमृतमई बचना दे राही मनुखी दुनियावी जीवां नू जो समझाउणा चाहुंदे हन एक मन एक चित हो के

अमृत हर हर नाम है मेरी जिंदड़िए, अमृत गुरमत पाए राम। हमें माया बिख है मेरी जिंदड़िए,

राम। चिरी चिरी मैंने बहुत समा विछुन्ना विछड़िया, वो विछोड़ा मुक गया ना जदों लिव लगी, क्योंकि विछोड़ा पिया ही उदों सी जदों लिव छुटक गई, उदे नालों सुरत टुट गई ते विछोड़ा पै गया। वह विछोड़ा कई जन्मां दा हो गया, पर जदों हुण मनुखा जन्म दे विच आके भगत जना दी बाणी दा रस बनिया, फिर चिरी विछुन्ना बहुत चिरा पिछों जाके ये जिहड़ा विछोड़ा सी हर प्रभ पाया, हर हरी प्रभु नू पा लिया, उदा मिलाप हो गया। जदों हरी प्रभु नू पाया ना, गल मिलिया सहज सुभाए राम, कहिंदे राम रमिया होया परमेश्वर प्रेम विच भिजिया होया, उने मैनू अपने गल नाल ला लिया, उने गलवकड़ी विच लै लिया। भी मैं कदों दा तैनू उड़ीकदा पिया सी भी तू आवें, पर आवें नाम दा रस लैके, ते नाम दा रस तेरे पल्ले नहीं सी पैंदा, इसलिए कदे गलवकड़ी मिली नहीं प्यारे दी। हुण गुरु दे राही तू अपने आप नू सुधार के सवार के जदों तू आया ते गल मिलिया, वह मैनू गल ला के मिलिया मेरा प्यारा, जिहड़ा कई चिरां तो विछड़िया होया सी। जिन्हां नाल साडा गूढ़ा प्यार होवे ना, भावें वह सखियां होणगियां सहेलियां ते भावें वह मित्र होण, परम प्यारे मित्र होण, जदों बहुत चिरां बाद मिलदे आ ना ते सहेलियां आपस विच गल ला के मिलदियां भी तू बड़े चिरां बाद मिली है, जदों भैणां आपस विच मिलदियां बड़े चिरां बाद ते गल ला के वह अपने आप ही गलवकड़ी पैंदी है। जदों भरा भरा जां मित्र मित्र आपस दे विच बड़े चिरां बाद मिले होण ते अपने आप गलवकड़ी पैंदी है वी मेरे प्यारिया मित्रा बड़े चिरां बाद मिले हैं, ते सानू परमेश्वर कदों मिलना जां जिन्हों मिलिया कदों मिलिया, कई जन्मां तों बाद जाके इस मनुखा जन्म विच मौका मिलिया, ते जिहड़ा गुरु वाला बन गया उहदे ते किरपा हो गई, क्योंकि ये गलवकड़ी गुरु दे राही पैनी है, होर किसे दे राही नहीं। इसलिए साहब ने कहा गुरमत मन ठहराइए, ये मन नू ठहराउणा गुरु दी मत गुरु दे उपदेश नाल है, ते जदों भगत जना दी बाणी नू सुन के लिव लग गई, सुरत लग गई, फिर चिरी विछुन्ना चिरा तो विछोड़ा जिहड़ा पिया सी हर प्रभ पाया, हरी प्रभु नू पा लिया, जदों पा लिया गल मिलिया, वह मैनू गल लग के मिलिया, वह मैनू गल लग के मिलिया। सहज सुभाए राम, वह बड़े सहज विच बड़े प्रेम विच और बड़े टिका दे विच, एक होंदी है गलवकड़ी फॉरमैलिटी वाली होंदी है दिखावे वाली, अंदर प्रेम नहीं होंदा, बस काली काली विच माड़ी जी गलवकड़ी पाई ते हो गया, पर इत्थे उन्हें टिक के प्रेम विच भिज के उन्हें मैनू अपने गल नाल ला लिया। मेरी जिंदड़ी है किते आ अवस्था साड़ी भी बन जाए। धन गुरु रामदास महाराज, गुरु अमरदास पातशाह जी नू ना गुरु अंगद देव महाराज जी ने आख्या तुसी हुण गोइंदवाल विच ही रहा करो, अजे गोइंदवाल साहिब नहीं सी होया। साहिब कदों हुंदा है? जदों गुरु अमरदास जी गुरु बनते हैं। ये भाई गोइंदे दी जमीन लैके दी उसारी कराई ते गुरु अंगद देव जी कहिंदे हुण तुसी उत्थे ही रहा करो, खडूर साहिब ना आया करो, उत्थे रह के हुण तुसी प्रचार करो। अखां विच अथरू आ गए, कहन लगे प्यारे सतगुरु जी मैं

क्यों मनोसारे कह नानक मन मेरे सदा रोरनाले साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे कर ता तेरे सब किश है जिस दे सो पावे सदा सिख सला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मना वसिया जिने इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बैठो जिस दियां ये वड्याइयां कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित कर सभाग्या शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस किते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम के लागे कह नान तै सुख हो तित कर अन दवाजे अनद सुनो वडभागी ओ सकल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे मिनमंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनद तुरे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोय दाई दाया खेल सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया।

की जीत। श्री साहिब जी सहाय, खालसे जी के बोल बाले, बोलो जी वाहिगुरु, बोलो जी।

हे समर्थ अगम पूरन मोहे मया तार अंधकूप महापयान नानक पार उतार हौ आया दूरों चल के मैं तक्की तौ सरनाए दियो मैं आशा रखी चित में मेरा सबो दुख गवाए जियो सजन सचा पात शाह सिर शाह दशा जिस पा

जा का शब्द सुनत सुख सारे, जा की टहल जम दूत बेदारे, जा की तीरक इस मन है सधारे, जा कै सिमरन मुख उजलारे, प्रभ के सेवक

0: प्रभु का सिमरन सहज समानी,
1: प्रभु का सिमरन में चल आसन, प्रभु का सिमरन कमल विगासन,
0: प्रभु का सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पा,
1: सिमरन से जन जिनको प्रभु मया, नानक तिन जन सरनी पया,
0: हर सिमरन कर भगत प्रगटाई, हर सिमरन लग वेद उपाय,
1: हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीक चौकुंठ जाते,
0: हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना,
1: हर सिमरन कियो सगले अकारा।

0: पै अरदास जियो पिंड सब तेरी राज।
1: तुम मात पितांबर कतेरी तुमरी कृपा में सुखनेरी।
0: कोई ना जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत।
1: सगल समग्री तुमरे सुतर तारी तुम ते होए सो आज्ञा।

0: जे प्रसाद संग सुख बसनाया पैर सिमरो तिसे रसना
1: जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याये ध्यान जो
0: जे प्रसाद पाठ पटम्बर हंडा

0: जय प्रसाद उल्लारत मनसुख पावे हर हर जस कहत
1: सगल छिदर ढाके मन सरनी पर ठाकुर प्रताप
0: जय प्रसाद को न

0: ये प्रसाद हस्त कर चले, ये प्रसाद संपूर्ण फल
1: प्रसाद परम गत पावे, जे प्रसाद सुख सह
0: ऐसा प्रत्याग अबरकत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो। ये प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तो ताको जा।
1: ये
0: प्रसाद तुम पावे सा, तेरे मन मेरे तुता सोरा।
1: प्रसाद सबकी गत होए, नानक जाप जपे जप।

0: संग अजर सहे
1: साध के संग बसैता नूचे साधु के संग महल पहुँचे
0: साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म
1: साध के संग पाई नाम निदान नानक साधु के कुर्बान
0: साध के संग सब कुल उदारे साध संग साजन मीत कुटम निस्तारे
1: साधु के संग सोधन पावे जिस दंते सबको वरसावे
0: साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग
1: साधु के संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन
0: साध के संग सर्वथान गम नान साध के संग सफल जन्म
1: साध के संग नहीं कछ घाल दर्शन भेटत होत निहाल
0: साध के संग कल्लू खत हरे साध के संग नरक पर हरे
1: साध के संग या हुआ सुहेला साध संग बिचरत हर मेला
0: जो इच्छे सोई फल पावे साध के संग ना व्यर्था जाओ
1: पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उदर साध सुन रसै
0: साध के संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ
1: साध के संग न ममते बिसरे साध संग सर पर निस्तरे
0: साध के संग लगे प्रमीठा साधु के संग कट कट डीठा
1: साध संग भय आज्ञाकारी साध संगत भई हमारी
0: साध के संग मिटे सब रोग नान साध पेटे संजोग
1: साध की महिमा भेद न जाने जेता सुने तेता बखे
0: साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही परपूर
1: साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत।

0: दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाए।
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर।
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी के सकल।

0: प्रसाद किया पर हरे मन की बासना मनते तरे
1: वैष्णो सो जिसु परसो प्रसन्न बिसन की माया।

0: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, जिसका नाम सतराम दास, सदा नक नक हर जान सो दादरगत परमा।
1: दास को आप कृपा करें, इस दास को सब सो

0: और अष्टपदी। कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार बिहारी,
1: कई कोट बे तीरथवासी, कई कोट बन ब्रह्मे उदासी,
0: कई कोट बे के स्रोते, कई कोट पिसर होते।

0: कई कोड जक नर पिशाच कई कोड भूत प्रे सुकर मृगा
1: दूर नानक आप अलिप्त रहा भरपूर
0: कई कोड पाताल के वासी कई कोड नरक स्वर्ग नवासी
1: कई कोड जन्म जीवे मरे कई कोड बो जोनी फिरे
0: कई कोड बैठती खाए कई कोड काली थक पाए
1: कई कोड किए धनवंत कई कोड माया में चिंत
0: जय जय पण तै तै रखी नान सब कुछ प्रभु के हाथी
1: कई कोड भय बैरागी राम नाम संग तिलिव लागे
0: कई कोड प्रभु को खोजनते आत्म में पार ब्रह्म लहंते
1: कई कोड दर्शन प्रभु

0: मन करना जोग ज्योतिष भावे सोई होग।
1: इनमें तप तप न हरंत नहीं कुछ पर बर
0: धार अदर रहा मैं हुक्मे उपजे हुक्म समावे
1: में उच्च नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार
0: देखे अपनी वडियाई नानक सब में रहा समाई
1: पावे मान गत पावे प्रभावे तपत्र त्रावे
0: बिन सास तेरा के प्रभावे।

बावे तिस मन का संग न जावे। सरते अर्जुन बलवंत खिन में होए जाए पसमंत। गुरु प्रसाद जा कमटे मन सोज नान दुर्ग प्रवाह। अनुगत वस्या करे हुंकार नरक स्वर्ग फिर विता। आप को जो भला कहावे तिसे भलाई।

0: जब तार को बैरिनी तब धन्य चलना ही चीत प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छूटे
1: को उठावे त्रिपत्नावे माया
0: अनुभव बिखिया।

0: अष्टपदी संत के दुखन आर्जा कटे संत के दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए
0: संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन शोभा ते ही
1: संत के देखो रखे न कोई संत के दुखन तान ब्रष्ट होए
0: संत कृपाल कृपा जी करे नान संसंग नंदक पीत रहे
1: संत के दुखन ते मुख भवे संतन के दुखन काग जो लवे
0: संतन के दुखन सर्व जोन पाए संत के दुखन तक क्रमाए
1: संतन के दुखन तृष्णा में जले संत के दुखन सबको चले
0: संत के दुखन ते सब जाए संत के दुखन नीच निचाए
1: संतो की गाथाओ को नाए नानक संत भावे ता ओए भी गत पाए
0: संत का नंद मात ताई संत का नंद खंटक न पाई
1: संत का निंदक मा तियारा संत का निंदक परमेश्वर मारा
0: संत का नंद राज तेहीन संत का नंदक दुखियार दीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग
0: संत की निंदा दुख में दुख नान संत पावी तांस का भी हुए मोक
1: संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसे का नहीं मित
0: संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी को सब त्यागे
1: संत का दुखी मां अहंकारी संत का दुखी सदा भिकारी
0: संत के दुखी जन्म में मरे संत की दुख ना सुख ते टरे
1: संत के दुखी को नाही ताओ नानक संत भावे ता लय मिलाए
0: संत का दुखी आज बीते टूटे संत का दुखी किते काज ना पहुंचे
1: संत के दुखी को ध्यान भरमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए
0: संत का दुखी अंतर ते थो था जो सांस बिना मृतक की लो था
1: संत

0: मछली तड़फड़ाए।
1: संत कदो की भूखा नहीं राजे जो पावक इंद्रन नी त्रापे।
0: संत कदो की छुटा अकेला जो बुआड़ तिल खेत माहे दुवेला।
1: संत कदो की धर्म तेरे संत कदो की सद मिथिया कहत।
0: किरत निंदक का दूरी पया नानक ज्योतिष भावे सोई थिया।
1: संत कदो की बिगड़ रूप होए जाए संत के दोखी को दरगाह मिले सजाए।
0: संत का दोखी सदा सहकाई है संत का दोखी न मरे न जीवाई है।
1: संत का दोखी की पूजे न आसा संत का दोखी उचले निराशा।
0: संत का दोख न तिष्ठे कोई जैसा भाव है तैसा कोई होए।
1: भया कृत न मिटे कोई नान जाने सच्चा सोई।
0: संकट जिसके हो करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार।
1: प्रभु की उस्त करो दिन रात सीतिहा सास की रात।

0: अमृत पियो सदा सुहेला कर ले नैनो
1: पीक ठाकुर कारंग सत्संग बिनसे सत्संग
0: गोविंद मिटे पाप जपिए
1: हर कर।

0: सकल संसार उद्र तिन मंत्र
1: सकल उदारन पौके सेवक दुख बिसारन
0: मेलय कृपाल गुर का शब जब है निहाल
1: उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करे बड़ पाके
0: पावे विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम कर मान
1: करे सुप्रभु के रंग सदा सदा बसे अर संग
0: सहज सुभाय होवे सो होय करने हार पछाने सोए
1: कृपा किया जन मीठ लगाना जसा सत संदिष्टन
0: उपजे तिज माए समाए।

0: हरि अविनाशी ब्रह्मन मेराक मानो कि तू प्रीतिया
1: किसे परा नाही किछ कोए सर्व निरंतर एको सोए
0: आपे बिना आपे दन्ना गैर गंभीर गही सुजना
1: ब्रह्म परमेश्वर।

0: सत उत्पात
1: सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बजाए तिसे सा भली
0: सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई
1: सत भजन साधु उपदेश सत जन जाके हृदय प्रवेश
0: सत निरत बुझै जे कोई नाम जपता की गत होए
1: आव सत की आसा सत आपे जाने अपनी मित गत
0: करत
1: कर मित न जाने किया नान जो सुभावे सो वर्तिया
0: विस्मत विषम पए विस्माद जिन बुझिया तिस आया स्वाद
1: सबके रंग राजन रहे गुर के बचन पदार।

0: सच अष्टपदी
1: चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार
0: दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत्यावनहार
1: सत सत सब धारी आपे गुण कारी।

0: मन्या कर्ण क्रामंतन मूल पछन्या
1: हृदय विश्वास प्रभ आया तत ज्ञान किस मन प्रगटाया
0: तैति नित पोहे बसन्ना जस्ते उजिया समय समन्ना
1: समय ले

0: के मन प्रति ठाकुर के सेवक निर्मल दी।
1: ठाकुर को सेवक जान संग प्रभु का सेवक नाम कै रंग।
0: सेवक पालनहारा सेवक की राखे निरंकार।
1: सेवक जिस दया प्रभु धारे नानक सो सेवक साथ साथ समारे।
0: अपने जन का प्रदाता की अपने सेवक की सर पर रखे।
1: अपने दास को देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई।
0: अपने सेवक की आपत रखे ताकि गत में कोई न लाखे।
1: सेवक को कोना पहुँचे प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे।
0: तो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया।
1: कल राख बसम करे लश्कर कोट लाख
0: का शासन कट दे आवता को रख दिख रहा।
1: जतन करत वो बात तिसके कर्तव्य थे
0: मारे न रखे वरना कोई सर्व जिया का रख सो।
1: सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलक भी डाले।
0: बार बार बार प्रभ जपिए पी अमृते मन तंत्र पिए।
1: गुरमुख पाया तिसकी चावर नाही दृष्ट आया।
0: नाम तन नामो रूप रंग नामो सुखर नाम का संग।
1: जो जन तृप्ता ने मन तन्ना में नाम समाने।
0: उठ बैठ सोत नाम को नान जन के सदका।
1: जस जेहबा दिन रात।

0: कीमत कीने न पाए
1: अनेक भगत बंधन नित करे चरण कमल हृदय सिमरे
0: हरि सतगुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपे
1: हे रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमृत सोए
0: कनाई कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुण
1: ता

0: साथ साथ प्रभु तुम्हें ध्यान
1: चरण कमल सो लागे पीर भगत करो प्रभु की नदनी
0: एको आधार नानक मागे ना प्रभु साथ
1: प्रभु की दृष्ट मास को होए अरस पावे बिल्ला को
0: जाकिया से जन तृप्ता ने पूरन पूरक नहीं डोला
1: सुबर परे प्रेम रस रंग जे चाव साथ के संग
0: परे सरन आन सब त्याग अंतर परगाश अंदिल
1: निवला बटपा बीज प्या प्रसोए नानक नाम तेस को होए
0: सेवक की मनसा पूरी भई सदगुरु ते

0: भगतवा चल सदा कृपा
1: नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कर्त प्रतपाल
0: कारण करतार भगत जना के प्राण
1: जोरित पे सो होए पनीत भगत पाय लावे मन ही
0: कर नीच अजान नानक तुमरी शरण पूरक भगवान
1: सर्व वैकुंठ मुक्त मोग पाए एक निम घर के गुण गाए
0: राज भोग बढ़ियाई हर के

0: जम नरगण पंसाय सुबाय तमसिं सोज कौ कत ठाय
1: आप अपनी जो धरे तब कवन निडर कवन कर।

0: तुम ते भिन्न किच होए आपन सुसव जगत पर
1: मारे
0: सो मुआज मनो बिसारी
1: को जाए सबसे रेख निरंजन राय
0: एक ही जुग जाके सुहात अंतर बार जानुसार
1: निदान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार
0: पूर्ण पूरे दयाल सब प्रहोत कृपाल
1: अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामे रहो ब्याप
0: प्रतपाल ने जीवन बो पान जो जो रचियो सो तसे ते आल
1: जिस पावे तिस ले मिलाए भगत करे हर के गुण गाए
0: मन अंतर विश्वास कर मान्या करना नानक इक जान्या
1: जल लगा रे कहनाए तिसकी आस न बिथी जाए
0: सेवको सेवा बने

0: सगळ सामग्री एकच कडमाय अनकरंगना ना दिसताय
1: अमृत प्रभ का नाम देही मह इसका
0: सुन समाज अनते नाद के न जाए तुझे समाज
1: देखे जिस आप दिखाए नानक तिस जन सो जी
0: सो अंतर सो बार नंद कट कट व्यापया भगवान
1: धरन माया काश पयाल सर्व लोक पूरन
0: पृथ्वी बांधन पर्वत है पार्वम जैसी आज्ञा तैसा कर्म
1: कौन पानी बैसंतर माए चार कुंट दे दिसे समाए
0: भन्न कोठा गुर प्रसाद सुख
1: पुराण सिमरत में देख ससियर सूर नखत
0: वाणी प्रभु की सबको बोले अब डोल न कबू डोले
1: कला कर खेले खेल मोल न पाइए।

0: अंतर्गत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप
1: सर्वभूता प्रतारा सर्व नयन आपेक्षण हारा
0: सगल समग्री जा का तना आपन जस आपी
1: आवण जानक खेल बनाया।

वाहेगुरु जी। एको ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निरपौ निर्वैरो अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद

जुगो जुग अटल, दीन दुनी दे मालक, सर्वरे कायनात दे सांझे रहबर, गुरुआं के गुरु, पीरां दे पीर, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी, तिन्हां दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पावन स्थाना उपर हफ्तावारी नाम सिमरन अभ्यास समागमां दे अंदर जुड़मिल बैठे गुरु प्यार वालेओ, सतगुरु जी ने बड़ी अपार बख्शिश कृपा वरताई है, जो अपने पावन चरणा कमलां पास जुड़ के बैठन दा सुभाग सतगुरु गुरु बाबा जी ने बख्शिश कीता है। आओ गुरु प्यार वालेओ, जिथे सतगुरु जी की पावन बाणी सुखमनी साहिब जी दे जाप करदिआं होइआं गुरु पातशाह वल्लों बख्शिश कीतियां सिख्यावां नूं दृढ़ करन दा यतन कर रहे सां, जो इन्हां हफ्तावारी समागमां दे अंदर सुखमनी साहिब जी की पावन बाणी दियां लड़ीवार विचारां चल रहीआं ने, उन्हां चल रहीआं लड़ीवार गुरबाणी विचारां दे नाल सांझ पाईए। विचारां दी आरंभता तो पहलां सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन, अपना रहमत भरिया हथ सिर ते रखण। सतगुरु आप रसना उत्ते वरत के पवन शब्द और गुरबाणी दी विचार साहिब आप करवा लैन और आप सरबत संगत असीस बख्शो। कोई रसना वांझी ना रहे, दोवें हथ जोड़ अपनियां मन बिरतियां एकागर करदिआं गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।

आनंद पाया मेरी माए सतगुरु, मैं पाया सतगुरु ता पाया सहसती मनु दियां बघाइयां। राग रतन परवार फरियां शब्द गा बनवाइयां, सबदो तांगा वो हरि केरा मन जिनी वसाया।

सारनाम अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवार ना सब नगला स्मरत स्वामी सो क्यों मनो विसार कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा करता तेरा सब किस है स्देह सुपाव सदा सब सलाह तेरी नाम अनुसावे नाम जिनका मन वसिया वाजे शब्द खनेर कह नानक सचे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा धारो सच नाम धान मेरा जन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख नाई वसया जनिसा सब पुजाइया सदा कुरबान किता गुर बैठो सिंह वडियाइया कह नानक सुनो संतो सत रूपे आरु साचा नाम मेरा धारो वाजे पंच शब्द कर सुपा गय सुपा गय शब्द वाजे

जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहिया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वजे अनहद पूरे। श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत तिपसरा देदाई राया खेला सकल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदूर करमी आप अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम त्याए आ गए सकत काल।

कोई न जाने तुमरा अंत उचेते ऊचा सगल समगरी तुमर सुतर तारी तुमरी गात मित तुम ही जानी

0: जस जिस की मत आए,
1: जुगो जुग अटल, चबर शतर तखत दे मालक, गुरुआं के गुरु, पीरां दे पीर, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी, तिन्हां दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पावन स्थानां उपर रात्रि वेले दे दीवाना अंदर जुड़मल बैठे गुरु प्यार वालेओ, सतगुरु जी ने बड़ा तरस किया है जो अपने पावन चरणा कमलां पास जुड़ के बैठण दा सुभाग सतगुरु गुरु बाबा जी ने बख्शिश किया है। आओ गुरु प्यार वालेओ, जिथे गुरु के कीर्तनियां पासों सतगुरु जी की पावन बाणी कीर्तन रूप विच सरवण करदे हां, बाणी दा रस, बाणी दा आनंद माण रहे सां। जो लड़ीवार गुरु इतिहास दियां विचारां आप संगतां इन्हां पावन स्थानां तों सरवण करदियां हो, वो चल रहे लड़ीवार इतिहास दियां विचारां दे नाल आपां सांझ पाईए। कल दे दीवाना अंदर आप संगत ने इत्थों तक इतिहास सरवण कीता सी कि धन गुरु कलगीधर पातशाह जी बहुत सारिया बख्शिशां अपने सिखां दे उते और दर ते आईयां होईयां संगतां दे उते सतगुरु पातशाह वरतौंदे ने, और गुरु साहब जी दे कोल भाई नंद लाल जी जिन्हां ने मालक पातशाह जी कोल जदों वो चल के आउंदे ने, जिहदे पिछे सारा प्रकरण औरंगजेब भाई नंद लाल जी नूं अपने धर्म दे अंदर उन्हां दा धर्म परिवर्तन करके जबरी उन्हां नूं अपने कोल अपनी अधीन रखना चाहुंदा है, ते भाई नंद लाल जी इस डर करके भी ना तो मैं अपना मजहब छड़ा ते ना औरंगजेब की अधीनगी कबूला, जिस करके वह धन गुरु कलगीधर साहब दे कोल आउण वास्ते अपने मन की जड़ी विचार है उन्हूं अपना लेंदे। सतगुरु पातशाह दे दर ते आके वह टिकदे ने, गुरु बाबा जी फिर उन्हां उत्ते बख्शिशां रहमतां किवें करदे ने, वह सारियां बातां ते गुरु पातशाह जी होर किहड़ियां किहड़ियां बख्शिशां ने जो सिख संगतां उत्ते वरतौंदे ने, आओ इतिहास दे अगलेरे पन्नियां नूं आपां विचारन दा यतन करिए। विचारां आरंभण तों पहलां सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन अपना रहमत भरिया हथ सिर ते रखण। गुरु साहब आप कृपा करके पावन इतिहास और गुरबाणी दी विचार साहिब आप करवा लैन, और आप सरबत संगत असीस बख्शो, कोई रसना वांझी ना रहे, गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
0: अपनो सिख पठाए हंकार, मोहे आदम को जगत उधारे।
1: ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਾਮਨੀ ਰਚੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਿਆ ਔਰ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਉਹ ਔਰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੋ ਸਿੱਖ ਪਠਾਏ ਹਕਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਦਿਆ ਮੋਹੇ ਅਧਮ ਕੋ ਜਗਤ ਉਧਾਰੇ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ।

पहला गगन में थाल रव चंद दीपक वनी तारिका मंडल जनक मोती धूप मला नलो पवन चवरो करे सगल वनराय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ सहस्तव नैना नैन है तोय को सहस मूर्तन नायक तो ही सहस पद बिमलन एक पद गंध बिन सहस्तव गांधी विचलित मोही सब मह जोत जोत है सोए तिस दै चानन सब मह चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जोत इस भावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहयाई प्यासा कृपा जल दे नानक सारे को होए जाते तेरे नाए वासा राग गोड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर वो भरिया मिल साधु खंडल खंडाए पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हरले मंडल मंडाए कर साधु अंजलि पुन वडाहे कर डंडोत पुन वडाहे रहाओ साकत हर साधना जानिया तिन अंतर हूँ मैं कंडाहे ज्यों ज्यों चल है जो मैं दुख पाव है जमकाल सह से डंडाहे हर जन हर नाम समाणी दुख जन्म मरण भव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सौ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम दा

एक पढ़े सुनहे गावे पर बाते करे इशनान इशनान करे पर बात सुध मन गुरु पूजा बिद सहत करं कंचन तन होए परस परस को ज्योत स्वरूपी ध्यान तरंग जग जीवन जगन्नाथ जल थल में रहया पूर बहु बिद बरनं सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तार

तिन तरियो समुदर रुदर खिन इक मह। जल हर बिंब जुगत जग रचा, कुंडल नी सुर जी सत संगत।

किंकनी शबद चनतकार खेल पहे जियो, काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सके, ईस बम ज्ञान त्यान तरत ही है चाहे जियो, सत साथ

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सर्वरे कैनात रोशन चराग, बार गाय नायक साहिब कमाल, साहिब जमाल, साहिब बरकत, सर्व सांझी बालता दृहबर बेअंत भगतान दी टेक, दसा पातशाहियां दी जागदी जोत, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जीआं दे पावन पवित्र स्थान गुरद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जीआं दे अमृत वेले दे दर्शन कर रहे हाँ, अमृत वेले दियाँ हाजरियाँ लगवा रहे हाँ। जो सतगुरां ने साडे सभना दी झोली दे अंदर पावन हुक्म दी दात पाई है, सो पावन हुक्म टोडी राग दे अंदर पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज धन धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जीआं दा शब्द है, जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर 711 अते 712 अंक दे उपर सवाईमान है। सो पातशाह जी पावन हुक्म दे राही ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ